कहूं रूप तारे महाराज सोहंग, कहूं देव कन्यान के मान मोहंग। कुजहंग प्रयात छंद श्री मुखवाग पातशाही दसवीं, सिरंग सेत शतरंग सो सुबंग विराजंग, लखे शेल छाया करे तेज लाजंग। विशाल लाल नैनंग तिर बंके लोयन दंतरी साला, विशाल लाल नैनंग महाराज सोहंग, तिगं आसवालंग हसंग कोट क्रोहंग। कहूं रूप तारे महाराज सोहंग।

जगन्ना को लागता गुरु अरदास रखवाला गोविंद राय भक्तन की रास वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु साहिब जीओ अरदास एक ओंकार वाहिगुरु साहिब वार्षिक पोती पाशी दसवीं प्रथम मोती समय का गुरु नानक लय त्याग रंग गुरु तेम अरदास रामदास सहाय अर्जन हर गोविंद सिमरो श्री हर राय श्री हर के दर्शन सदु विदाय तेग बहादुर सिमरै कर नानंद अवताए सब थाई हो सहाय दसवें पातशाह तन तन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी हो सब थाई हो सहाय दसा पातशाह ज्योत जुगो जोटल गुरु गद्दी विराजमान शब गुरु बाणी गुरु गुरु है बाणी बिच बाणी अमर सारे गुरबाणी कह से पिजन मन प्रताप गुरु विस्तारे तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी पाठ दर्शन दादा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी आप जी साजे नवाजे पंच प्यारे चार साहबजादे चार मुक्ते हठियां जपियां तपियां जिन्हां नेमियां प्रेमियां ने तेरा नाम जपिया वंड के चकिया देख चलाई देख वाही देख कैंडिट कीता तिन्हां प्यारा प्यारा ने कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी दर्शन करके खालसा जी बोलो जी Thank you.

सह सवाए सातन कंत प्यारी सा संजम सदा है निर्मल गुर कै शब्द सिगारी मेरा प्रभ साचा सद ही साचा जिन आपे आप पाया नानक सदा बिरलावे आपना जिन गुर चरनी चित लाया फिर पायड़ा बालड़िए आंदन सहजे माती राम

सहज आनंद हुआ बड़भागी, मन हर हर मीठा लाया। जन कह नानक लाभ पहली, आरंभ काज रचाया। सहज आनंद

उन संग सारे प्रभु जी सुनाई, बिना तेग तीरंग रहो ना भाई, बिना शस्त्र के संग नरंग भेट।

सुहावन है एह गुरु की मोहर सुहावन। जब पहले सब सृष्ट उपाई तब ही मानुख देह बनाई तन इसके

0: सोई
1: सोई सदा सच साहेब साचा सच नाय। पीओ सी जाए न जासी रचना जिन रचाई,
0: रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी माया जिन पाई।
1: कर कर वेख्या कीता अपना जिव तिस दी वडियाई,
0: जो तिस भावे सोई करसी हुकम न करना जाई।
1: सो पातशाहो शाह पात साहेब नानक रहन रजाई,
0: संतोख सरम पत चोली त्या

0: सार न जानी गुरु बाजो ततै सार न जानी
1: तेहि गुणी संसार परम सुत्ता सुतिया रहन विहाणी
0: गुर कृपा ते से जन जागे जिन्ना हर मन बसिया बोलहे अमृत बाणी
1: कहे नानक सो तत पाहे जिसनु अनदिन हर लिव लागे जागत रहन विहाणी
0: माता के उदर मह प्रतिपाल करे सो क्यों मनो विसारिये
1: मनो क्यों विसारिये बिड़ दाता जे अग्न में आहार पहुंचावे
0: उसनु के हो पोहे न सकी जिसनु अपनी लिव लावे
1: अपनी लिव आपे लाए गुरमुख सदा संभालिये
0: कहे नानक ए बड़ दाता सो क्यों मनो विसारिये
1: जैसी अगन उदर

गुरु प्यारी साध संगत जी, सचे पातशाह जी ने जो अज का हुक्मनामा बख्शिश किया है, सोरठ की वार दे विच्चों सचे पातशाह जी ने गुरु अमरदास पातशाह जी की मोहर लगी हुई सलोक महला तीजे की बख्शिश की है। हस्ती सिर ज्यों अंक सहै आहरण ज्यों सिर दे सचे पातशाह कहिंदे जी, उस अकाल पुरख की तू सेवा करनी है ना, तो इस तरह कर जिस तरह हाथी दे सिर ते कुंडा आंदा ना, तैनू डर रहिंदा कि जे मैं कोई गलती करदा तो मेरे सिर दे विच वजना। जिवें आहरण जिहड़ी आ उह वदान दे अगे अपना सिर कर दिंदी आ कि मेरे उत्ते रख के जो तू बनाउणा लोहार नूं भी तू बना लै। उस तरह कहिंदे सचे पातशाह नूं अपना आप भेट कर दे, मन तन आगै राख कै उभी सेव करे। कहिंदे इसे तरह तू भी अपना मन ते तन जिहड़ा गुरू नूं भेट करके उहदी सेवा करनी कर। इउं गुरमुख आप निवारी है सब राज सृष्ट काले। कहिंदे जदों सचे पातशाह ने तेरे ते ये बख्शिश कर दिती ना कि तेनूं नाम जपना आ गया, तेनूं उहदी सेवा करनी आ गई, फिर तेनूं सारी सृष्टि का राज भी मिल जाता। पर नाल दी नाल बाणी दे विच एक शब्द आउंदा कि राज ना चाहूं मुक्त ना चाहूं मन प्रीत चरण कमलारे। जदों बंदे दी अवस्था बन जाती नाम जपण दी, फिर उहदे वास्ते ये सारा कुछ मिट्टी हो जाता। ना राज भाग मंगदा, ना वो कोई होर वस्तुआं मंगदा। वह कहिंदा सचे पातशाह तेरे चरणा दी प्रीत ही इस तरह की आ कि जे इहदे तो दूर जाना तो फिर मैनू डर लगता कि किते मेरी प्रीत जिहड़ी उह तेरे नालों टुट ना जावे। नानक गुरमुख बूझी है जां आपे नदर करे, ये कृपा जे ओ आप करदा तां ये गुरमुखां दे हिरदे दे विच वसदा। महला तीजा, जिन गुरमुख नाम त्याया आए ते परवान। जिहड़े नाम जपदे सचे पातशाह कहिंदे इस धरती ते आए ओ परवान ने ते अगे

खाले सबना जिन करते करना गे चिंता भी करनी तासो करता चिंता करे जिन उपाय जागे तिस ज्वारी स्वास्थ्य से तिस दिवान पाक नानक सच्चे नाम पेने क्या टिका क्या ताक महला पहला।

क्या कतु अपारा अलख नलखिया गमया जोनी तू नाथा नातन हारा किस पै दे कहो तू कैसा तब जाचक तू दा तारा भक्त ही नानक दर देखो एक नाम मिले उरतारा मलार महला पहला जिन धन पिरका साधना जानिया साहब बिलख बदन कमलानी भई नरासी धर्म की फासी बिन

रहाउ। नौतन प्रीत सदा ठाकुर स्यों, अंधन भक्त सुहावे। मुक्त पहे गुर दर्श दिखाया, जुग जुग भक्त सुभावी। हम थारे त्रिपवन जग तुमरा, तू मेरा हो तेरा। सतगुरु मिलया निरंजन पाया, पवजल बहर न पवजल फेरा। अपने प्रहर देख बिगासी, तौ तन साच सिंगारू। अकल निरंजन स्यो सच साची, गुरमत नाम अदारू। मुक्त पई बंधन गुर खोलै, शब्द सुरत मत पाई। सुरत मुक्त पई बंधन गुर खोलै, शब्द सुरत पत पाई। नानक नाम निद अंतर

दुष्ट पाउ तज निंद पराई क्राम क्रो चंडार महल में बैठे अगमय पार पीतर अमृत सुई जन पावे जिस गुर का शब्द रतन आचार रहाउ दुख सुख दो सम कर जाने बुरा पला संसार शुद्ध बुद्ध सुरत नाम हर पाइये सत्संगत गुर प्यार ऐन सलाह हर नाम प्राप्त गुरदाता देवनहार गुरमुख सिख सोई जन पाए जिसनु नदर करे करतार काया महल अंदर मंदर कर हर का तिस

क्या कर आख बखानिए माई रहाऊ ऊपर दर असमान पयालु क्यों कर कहे देह विचारु बिन जेवा जो जपेह आए कुही जाने कैसा नाऊ कथनी बदनी रह निपरात सोई बूझै होवै जिसतात एनस अंतर रैल बुलाए सोई पुरख जे सच समाए जात कुलीन सेवक जय होए ताका कहना कहो ना कोए विच सनाती सेवक होए नानक पानिया पहरे सोए मलार महला पहला दुख विछोड़ा एक दुख भूख एक दुख सख्त वार जमदूत एक दुख रोग लगे तन ताए वैद न भूलै।

मन अंधे को मिले सजाए, वेदना पोले दारू लाए, चंदन का फल चंदन वास, मानस का फल कट में सास है, सास गया काया टल पाए, ताके पाछे कोई न काए, कंचन काया निर्मल हंस है, जिसमें ना निरंजन अंश है, दुख रोग सब गया गवाए, नानक सूट।

गुण सब शाव रथ फिरंदी से थाव देह ना नाओ ना हो वै जात उथे दे इथे सब रात साध कर समदा त्रिसना क्यो तेल काम क्रोध अग्नि सोमेल होम जग अर पाठ पुराण जुत पावै सो परवान तप कागद तेरा नाम निशान जिनको लिखिया एहो निदान से तनवंती से कर जाए नानक जननी तन्नी माए मुलार महलना पहला बाग्य का पढ़ बोले बैन लम्मा नक काले तेरे नैन कबहूं साहिब देखिया पहन उड़ा उड़ चढ़ा आसमान साहिब समरथ तेरे तान जलता डूगर ते का तीर थान तरन तन साहिब वीर जिन तान साज दिए नाल खंभ अत तृष्णा उड़ने की डंज नदर करेता बंदा तीर जो वखाले तू वेखा वीर ना ए तन जाएगा ना जाहेंगे खंभ खंभ पवने पानी अग्नि का संबंध नानक कर्म होवे जपिए कर गुरपीर सच समावे हो शरीर मलार महला तीजा चौप दे कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद निरंकार आकार है आपे आपे परम बुलाए कर कर करता आपे वेखे जित पावे तित लाए सेव को एहा वड्याई जा को हुक्म मनाए अपना पाणा आपे जाने गुर कृपा ते लही है एहा सख्त सवे कर आवै जीव दया मर रही है रहाउ वेद पढ़ै पढ़वाद बखाणै ब्रह्मा विष्णु महेशा ए त्रिगुण माया जिन जगत पलाया जन मरण का सहसा गुरप्रसादी एको जाने चुके मनो अदेसा हम दीन मूर्ख अविचारी तुम चिंता करो हमारी ओह दयाल कर दास दासा का सेवा करी तुम्हारी एक निधान देह तू अपना अहनस नाम वखाणी कहत नान गुरप्रसादी बुझो कोई ऐसा करे विचारा ज्यों जल ऊपर फैन बुदबुदा तैसा ये संसारा जिसते होया तिसे समान चूक गया पसारा मलार महला तीजा जिनी हुकम पछाणे से मेले हमें शब्द जलाए सच्ची भगत करे दिन राती सच रह लिवलाए सदा सच हर वेख दे गुर के शब्द सुबाए मन रे हुकम मन सुख होए प्रभाणा अपना भामदा जिस बख्शे तिस बिघन लागे बिघन ना कोई रहाओ त्रैगुण सभा धात है ना हर भगत न पाए गत मुक्त कदे न हो वही हमें कर्म कमाहे साहिब भावे सो थिया पया करत फराहे सतगुरु भेटे मन मर रहे हर नाम वसे मन आए

माहे समाए गुरमुख नाम रते से उदरै गुर का शब्द विचार जीवन मुक्त हर नाम त्याया हर राख्या उतार मन तन निर्मल निर्मल मत उत्तम उत्तम बाणी होई एको पुरख एक प्रभ जाता दूजा अवरण कोई आपे करे कराए प्रभ आपे आपे नदर करे मन तन राता गुर की बाणी सेवा सुरत समे अंतर वसया लिखय पेवा गुरमुख होए लिखाए नानक जिस पावे तिस आपे देवे भावै तिवै चलाए मलार महला तीजा दोतके सतगुर ते पावे कर दर महल सुथान गुर शब्दी चूके विमान जिन कौ ललाट लिखे।

अणदन लागै सद हर स्यो ध्यान, गुर शब्द रते सदा बैरागी, हर दरगा साची पावै मान। ए मन खेलै हुक्म का बादा, एक खिन मैं दै दिस फिर आवै, जां आपे नदर करे हर प्रभ साचा, ता ए मन गुरमुख तत्काल वस आवै। इस मन की बिद मन हूं जाणै, गुजै

विद ताका कर्म कमाए त्रैगुण बाणी वेद विचार विख्या मैल विख्या वपार मन जन मैं फिर होए कुवार गुरमुख धुरिया गुण और तार गुरु मान है सब कोय गुर बचन नहीं मन शीतल होय चौ जुग सोभा निर्मल जन सोए नानक गुरमुख विरला कोय राग मलार महला चवता कर पहला चौपदे कुअंकार सतगुर प्रसाद आन दिन हर हर त्यायो हृदय मत गुरमत दुख विसारी सभ्यासा मनसा बंधन टूटै हर हर प्रभ कृपा धारी नैनी हर हर लागी तारी सतगुर देख मेरा मन बिकसियो जन नानक हर भेट्यो बनवारी रहाओ जिने ऐसा नाम विसारिया मेरा हर हर तिसकै कुल लागी गारी हर तिसकै कुल परसूत न करियो तिस विधवा कर मैं तारी हर हर आन मिलाव गुरु साधु जिसैन सार उर धारी गुर डिठै गुर का सिख बिकसै ज्यो बारक देख मैं तारी धन बिरका एक ही संग वासा विच होम मैं पीत करारी गुरपुरै होम मैं पीत तोरी जन नानक मिले बनवारी मिला

तीर्थ 68 मज्जन आई सत्संगत की तूर पर उड नेत्री सब दुरमत मैल गवाई रहाओ। जाहर नवी तपै भागीरथ आणी केदार ता प्यो मैं साई काशी कृष्ण चरावत गाऊ मिल हरजन शोभा पाई। जितने तीर्थ देवी थापे सब जितने लोचै धूर साधु की ताई। हर का संत मिलै गुर साधु लै तिसकी धूर मुखलाई। जितनी सिष्ट तुम्हारी मेरे स्वामी साहब तितनी लोचै धूर साधु की ताई। नानक लाट हो।

चंचल मत बारक बपरे की सर्प अगन कर मिले मात पिता कंठ लाए राख अणद सहज तब खेल जिसका पिता तू है मेरा स्वामी तिस बारक भूख कैसी नव निध नाम निधान ग्रह तेरे मन बंश है सो लैसी पिता कृपा ला गया ए दीनी बारक मुख मांगे सो देना नानक बारक दर्स प्रभ जाए मोय हृदय बसै नित चरना मलार महला पंजवा सगल विधि जुर आहर करे आ तजो सगल देसा कारज सगल रंभ्यो कर का ठाकुर का भरोसा

स्त्री रूप चेरी की न्याय शोभ नहीं बिन पर तारे बिनो सुनो जब ठाकुर मेरे बिनो सुनो जब ठाकुर मेरा बेगायो कृपा तारे।

0: सिमरो सिमर सिमर सुख पावो
1: काल कलेश तन माहि मटावो
0: सिमरो जास संबर एक
1: नाम जपता गांत अनेके
0: वेद प्राण सिमरत सदाखर
1: किन्ने राम नाम एक अखर
0: किनका एक जस जीव सावे
1: ताकी महिमा गनी ना आवे
0: कांकी एके दर्श तोहारो
1: नानक उन संग मोहे अधारो
0: सुखमने सुख अमृत प्रभ नाम
1: भक्त जना के मन विश्राम रहाओ
0: प्रभ के सिमरन गर्भ ना बसे
1: प्रभ के सिमरन दुख जा मनासे
0: प्रभ के सिमरन काल पल पर हरे
1: प्रभ के सिमरन दुश्मन टरे
0: प्रभ सिमरत कछ बिगन ना लागे
1: प्रभ के सिमरन आंदन जागे
0: प्रभ के सिमरन भौ ना व्यापे
1: प्रभ के सिमरन दुख ना संतापे
0: प्रभ का सिमरन साध के संग
1: सारन दान नानक हर रंग
0: प्रभ के सिमरन रिद सिद्ध नानद
1: प्रभ के सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध
0: प्रभ के सिमरन जप तप पूजा
1: प्रभ के सिमरन भिन से दूजा
0: प्रभ के सिमरन तीर्थ स्नाने
1: प्रभ के सिमरन दरगे माने
0: प्रभ के सिमरन होय सो भला
1: प्रभ के सिमरन सो फल भला
0: से सिमरे जन आप सिमराए
1: नानक ताके लागो पाए
0: प्रभ का सिमरन सब ते ऊंचा
1: प्रभ के सिमरन उदरे मूचा
0: प्रभ के सिमरन तृष्णा बुझे
1: प्रभ के सिमरन सबके सोजे
0: प्रभ के सिमरन नाहीं जम तरासा
1: प्रभ के सिमरन पूर्ण आसा
0: प्रभ के सिमरन मन के मल जाए
1: अमृत नाम रित माहे समाए
0: प्रभ जी बसे साध की रसना
1: नानक जन का दासन दसना
0: प्रभ को सिमरे से तन

0: से पुत्र बंते,
1: प्रभ को सिमरे से जन परवान,
0: प्रभ को सिमरे से पुरख प्रधान,
1: प्रभ को सिमरे से बहमोताजे,
0: प्रभ को सिमरे से सर्व के राजे,
1: प्रभ को सिमरे से सुखवासी,
0: प्रभ को सिमरे सदा बनासी,
1: सिमरन ते लागे जन आप दयाला,
0: नानक जन की मंगे रवाला,
1: प्रभ को सिमरे से परोपकारी,
0: प्रभ को सिमरे तिन सद बलिहारी,
1: प्रभ को सिमरे से मुख सुहावे,
0: प्रभ को सिमरे तिन सुख बिहावे,
1: प्रभ को सिमरे तिन आत्म जीता,
0: प्रभ को सिमरे तिन निर्मल रीता,
1: प्रभ को सिमरे तिन आनंद कनेरे,
0: प्रभ को सिमरे बसे हर नीरे,
1: संत कृपाते अंधन जाग,
0: नानक सिमरन पूरे भाग,
1: प्रभ के सिमरन कारज पूरे,
0: प्रभ के सिमरन कहूं ना चूरे,
1: प्रभ के सिमरन हर गुण बाने,
0: प्रभ के सिमरन सहज समाने,
1: प्रभ के सिमरन निश्चल आसन,
0: प्रभ के सिमरन कमल बगासन,
1: प्रभ के सिमरन अनहद चुनकार,
0: सुख प्रभ सिमरन का अंत न पार,
1: सिमरे से जन जन को प्रभ मैया,
0: नानक तिन जन सरनी पिया,
1: हर सिमरन कर भगत प्रगटाए,
0: हर सिमरन लग भेद पाए,
1: हर सिमरन पय सिद्ध जति दाते,
0: हर सिमरन नीच कुंट जाते,
1: हर सिमरन धारी सब धरना,
0: सिमर सिमर हर कारण करना,
1: हर सिमरन कियो सगल अकारा,
0: हर सिमरन में आप निरंकारा,
1: कर कृपा जिस आप बुझाया,
0: नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया, सलोक
1: दीन दर्द दुख पंजना,
0: काट काट नाथ अनाथ,
1: शरण तुम्हारी आयो,
0: नानक के प्रभु साथ, अष्टपदी
1: जय मात पिता सुत मीत ना पाई,
0: मनोहा नाम तेरे संग साई,
1: जय महाप्यान दूत जम दले,
0: केवल नाम संग तेरे चले,
1: जय मुश्किल होवे अत भारी,
0: हर को नाम खिन माए अधारी,
1: अनेक पुने चरण करत नहीं तरे,
0: हर को नाम कोट पाप पर हरे,
1: गुरमुख नाम जपो मन मेरे,
0: नानक पावो सुख कनेरे,
1: सगल सृष्ट को राजा दुखिया,
0: हर का नाम जपत होए सुखिया,
1: लाख करोरी बंदना परे,
0: हर का नाम जपत निस्तारे,
1: अनेक माया रंग तिख ना बुझावे,
0: हर का नाम जपत अकावे,
1: जय मार्ग हो जात अकेला,
0: तै हर नाम संग होत सहेला,
1: ऐसा नाम मन सदा ते आइये,
0: नानक गुरमुख परम गत पाइये,
1: छूटत नहीं कोट लख बाही,
0: नाम जपत पार पराही,
1: अनेक बिघन जय आए संगारे,
0: हर का नाम तत्काल उधारे,
1: अनेक जोन जन में मर जाम,
0: नाम जपत पावे विश्राम,
1: हो मैला मल कबू ना धोवे,
0: हर का नाम कोट पाप खोवे,
1: ऐसा नाम जपो मन रंग,
0: नानक पाइये साध के संग,
1: जय मारक के गन जाए ना कोसा,
0: हर का नाम उहा संग तोसा,
1: जय पांडे महा अंध गुबारा,
0: हर का नाम संग उजियारा,
1: जहां पंतर को नासियान,
0: हर का नाम ते नाल पिशानो,
1: जय महा प्यान तपत बो काम,
0: ते हर के नाम की तुम ऊपर शाम,
1: जहां त्रिखा मन तुज करखे,
0: ते नानक हर हर अमृत बारखे,
1: भक्त जना के बर्तन नाम,
0: संत जना के मन विश्राम,
1: हर का नाम दास की ओट,
0: हर के नाम उदरे जन कोट,
1: हर जस करत संत दिन रात,
0: हर खुद साध कमात,
1: हर जन के हर नाम निदान,
0: पार मंजन कीनो दान,
1: मंतन रंग रते रंग एक,
0: नानक जन के बिरत भवेके,
1: हर का नाम जन को मुक्त जुगत,
0: हर के नाम जन को तृप्त भुगत,
1: हर का नाम जन का रूप रंग,
0: हर नाम जपत का परे न पंग,
1: हर का नाम जन की वड्याई,
0: हर के नाम जन शोभा पाई,
1: हर का नाम जन को भोग जोग,
0: हर नाम जपत का सुनाए वियोग,
1: चंद्राता हर नाम की सेवा,
0: नानक पूजे हर हर देवा,
1: हर हर जन के मालिक जीना,
0: हर तन जन को आप प्रभ दीना,
1: हर हर जन के ओट सतानी,
0: हर प्रताप जन अवर ना जानी,
1: ओत पोत जन हर रस राते,
0: सुन समाद नाम रस माते,
1: आठ पैर जन हर हर जपे,
0: हर का भक्त प्रगट नहीं छपे,
1: हर की भक्त मुक्त भो करे,
0: नानक जन संग केते तरे,
1: पार जाते हर को नाम,
0: काम तेन हर हर गुण गाम,
1: सब ते उत्तम हर की कथा,
0: नाम सुनत दर्द दुख लथा,
1: नाम की महिमा संत रिदवसे,
0: संत प्रताप दुर्त सब नासे,
1: संत का संग वड भागी पाई,
0: संत की सेवा नाम ते आइये,
1: नाम तो

0: जस नाहे हर हरे
1: नानक नामे अमोल अष्टपदी
0: जाप ताप ज्ञान सब ध्यान
1: शास्त्र सिमरत बखियान
0: योग अभ्यास कर्म धर्म किरिया
1: सगल त्याग मन मध्य फिरिया
0: अनेक प्रकार किए बो जतना
1: कौन दान होमे बो रतना
0: शरीर कटाए होमे कर राते
1: वर्त नेम करे बो पाते
0: नहीं तुल राम नाम विचार
1: नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार
0: नौखंड पृथ्वी फिरे चर जीवे
1: महादास पीसर थीवे
0: अगन माहे होम तो प्राण
1: कान का सर है भरपूम दान
0: न्योली कर्म करे बो आसन
1: जैन मन सांझ मत साधन
0: निमक निमक कर शरीर कटावे
1: तो भी होमे मेल न जावे
0: हर के नाम संसर कछना है
1: नानक गुरमुख नाम जपत गत पाए
0: मन कामना तीर्थ दे छूटे
1: गर्भ मानना मन ते हुटे
0: सोच करे दिन सर रात
1: मन की मेल न तन ते जात
0: इस देही को बो साधना करे
1: मन ते कबू न बिखिया टरे
0: जल धोवे बहु दे अनीत
1: शुद्ध काम होए काची पीत
0: मन हर के नाम की महिमा ऊंच
1: नानक नाम उदरे पतन बो मूच
0: बहुत स्यानप जम का भाव व्यापे
1: अनक जतन कर तृष्णा त्रापे
0: देख अनेक अगन नहीं बूझे
1: कोट पादर के नहीं सिजे
0: छूट सनाही उब प्याल
1: होए व्यापे माया जाल
0: अबर करतूत सगली जम डाने
1: गोविंद पंडित ते नहीं माने
0: हर का नाम जप दुख जाए
1: नानक बोले सह सवाए
0: चार पदार्थ जे को मांगे

0: जेको जन्म मरण ते डरे
1: साध जन की सरनी परे
0: जिस जान को प्रभ दर्श पे आसा
1: नानक ताके बल बल जस
0: सगल पुरख में पुरख प्रधान
1: साध संग जाका मिटे अभिमान
0: आपस को जो जाने नीचा
1: सो गनिय सब ते ऊंचा
0: जाका मन होए सगल की रीना
1: हर हर नाम तेन काट कर चीना
0: मन अपने ते बुरा मिटाना
1: देखे सगल श्रेष्ठ साजना
0: सुख दुख जन समदृष्टे

0: साध के संग मुख उज्जल होत,
1: साध संग मल सगली खोत,
0: साध के संग बटे अभिमान,
1: साध के संग प्रगटे सो ज्ञान,
0: साध के संग पूजे प्रभ नेरा,
1: साध संग सब होतन वेरा,
0: साध के संग पाए नाम रतन,
1: साध के संग एक ऊपर जतन,
0: साध के महिमा बरने कौन पराने,
1: नानक साध की शोभा प्रभ माहे समाने,
0: साध के संग अगोचर मिले,
1: साध के संग सदा पर खुले,
0: साध के संग आवे बस पंचा,
1: साध संग अमृत पूंचा,
0: साध संग होए सब की रेन,
1: साध के संग मनोहर बैन,
0: साध के संग न कथु तावे,
1: साध संग अस्तर मन पावे,
0: साध के संग माया ते पहन,
1: साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न,
0: साध संग दुश्मन सब मीत,
1: साधु के संग महापनीत,
0: साध संग किसके किसको नहीं बैर,
1: साध के संग न भिगा पैर,
0: साध के संग नाही को मंदा,
1: साध संग जाने परमानंदा,
0: साध के संग नाही हो ताप,
1: साध के संग तजे सब आप,
0: आपे जाने साध बढ़ाए,
1: नानक साध प्रभु बन आए,
0: साध के संग न कब हो तावे,
1: साध के संग सदा सुख पावे,
0: साध संग बस्त अगोचर लहे,
1: साधु के संग अजर सहे,
0: साध के संग बसे थान ऊंचे,
1: साधु के संग महल पहुँचे,
0: साध के संग दृढ़ सब धर्म,
1: साध के संग केवल पार ब्रह्म,
0: साध के संग पाए नाम निदान,
1: नानक साधु के करमान,
0: साध के संग सब कुल उदारे,
1: साध संग साजन मीत कुटुंब निस्तारे,
0: साधु के संग सो धन पावे,
1: जिस धन ते सब को बरसावे,
0: साध संग धर्म राय करे सेवा,
1: साध के संग शोभा सुर देवा,
0: साधु के संग पाप लायन,
1: साध संग अमृत गुण गायन,
0: साध के संग सर्व थान गम,
1: नानक साध के संग सफल जन्म,
0: साध के संग नहीं कछु काल,
1: दर्शन पीड़ित होत निहाल,
0: साध के संग कलुखत हरे,
1: साध के संग नक पर हरे,
0: साध के संग इहां उहां सुहेला,
1: साध संग विसरत हर मेला,
0: जो इच्छे सोई फल पावे,
1: साध के संग न व्यर्था जावे,
0: पार ब्रह्म साध रिद बसे,
1: नानक उदरे साध सुन रसे,
0: साध के संग सुनो हर नाम,
1: साध संग हर के गुण गाओ,
0: साध के संग न मनते बिसरे,
1: साध संग सर्प निस्तारे,
0: साध के संग लगे प्रभ मीठा,
1: साधु के संग कट कट डीठा,
0: साध संग पहे आज्ञाकारी,
1: साध संगत पई हमारी,
0: साध के संग मिटे सब रोग,
1: नानक साध पेटे संजोग,
0: साध के महिमा वेद न जाने,
1: जिता सुने तेता बखियाने,
0: साध की उपमा ते गुनते दूर,
1: साध की उपमा रही भरपूर,
0: साध की शोभा का नाही अंत,
1: साध की शोभा सदा बेअंत,
0: साध की शोभा ऊंचते ऊंची,
1: साध की शोभा मूचते मूची,
0: साध की शोभा साध बन आई,
1: नानक साध प्रभ भेद न पाई, सलोक
0: मन साचा मुख साचा सोए,
1: अवर न पेखे एक बिन कोए,
0: नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी
1: होए, अष्टपदी
0: ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप,
1: जैसे जल में कमल लेप,
0: ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख,
1: जैसे सूर सर्व को सुख,
0: ब्रह्म ज्ञानी के दृष्ट समान,
1: जैसे राज रंग को लागे तुल्प मान,
0: ब्रह्म ज्ञानी के धीरज एक,
1: यो वास्ता को खोदे को चंदन लेप,
0: ब्रह्म ज्ञानी का यह गुना,
1: नानक ज्यो पाव का सह स्वभाव,
0: ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला,
1: जैसे मैल न लागे जला,
0: ब्रह्म ज्ञानी के मन होए प्रगास,
1: जैसे तारू पर आकाश,
0: ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सतर समान,
1: ब्रह्म ज्ञानी के नाई अभमान,
0: ब्रह्म ज्ञानी ऊंच ते ऊंचा,
1: मन अपने है सब ते नीचा,
0: ब्रह्म ज्ञानी से जन पहे,
1: नानक जिन प्रभ आप करे,
0: ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना,
1: आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना,
0: ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया,
1: ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा ना पया,
0: ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी,
1: ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि अमृत बरसी,
0: ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता,
1: ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल योग्यता,
0: ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान,
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान,
0: ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आस,
1: ब्रह्म ज्ञानी का नहीं बनास,
0: ब्रह्म ज्ञानी के गरीबी समाह,
1: ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार महा,
0: ब्रह्म ज्ञानी के नाही धंधा,
1: ब्रह्म ज्ञानी ले तब तबंदा,
0: ब्रह्म ज्ञानी के होए सो भला,
1: ब्रह्म ज्ञानी सो फल फला,
0: ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार,
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी जपे सगल संसार,
0: ब्रह्म ज्ञानी के एक रंग,
1: ब्रह्म ज्ञानी के बसे प्रभ संग,
0: ब्रह्म ज्ञानी के नाम आधार,
1: ब्रह्म ज्ञानी के नाम परवार,
0: ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत,
1: ब्रह्म ज्ञानी अब बुद्ध त्यागत,
0: ब्रह्म ज्ञानी के मन परमा, परमानंद
1: ब्रह्म ज्ञानी के कर सदा आनंद
0: ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं बनास
0: ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता
1: ब्रह्म ज्ञानी एक संग हिता
0: ब्रह्म ज्ञानी का होए अचिंत
1: ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत
0: ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभ आप
1: ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप
0: ब्रह्म ज्ञानी सदा ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाइये
1: ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइये
0: ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर
0: ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है
1: ब्रह्म ज्ञानी के सगल मन माहे
0: ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद
1: ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश
0: ब्रह्म ज्ञानी का कथया न जाय अध्याखर
1: ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकर
0: ब्रह्म ज्ञानी की कीमत कौन बखाने
1: ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने
0: ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार
0: ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का करता
1: ब्रह्म ज्ञानी सा जीवे नहीं मरता
0: ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता
1: ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख बताता
0: ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ
1: ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ
0: ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार
1: ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार
0: ब्रह्म ज्ञानी की शोभा

0: जिसके अंतर राज अभिमान है
1: सो नरक पाती होत सुहान है,
0: जो जाने मैं जो बनवंत
1: सो होवत विष्टा का जंत,
0: आप उसको कर्मवंत कहावे
1: जन मरे बो जो परमावे,
0: धन भूम का जो करे गुमान
1: सो मूर्ख अंधा ज्ञान,
0: कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे
1: नानक यहाँ मुक्त आगे सुख पावे,
0: धनवंता होए कर घर बावे
1: तृण समान का संग न जावे,
0: वो लश्कर मानुख ऊपर करे आस
1: पर पीतर ताका होए बनास,
0: सब ते आप जाने बलवंत
1: किन में होए जाए पसमांत,
0: किसना बदे आप अहंकारी
1: तार मराए तिस करे खुवारी,
0: गुरु प्रसाद जाका मिटे अभिमान
1: सो जान नानक धरगे परवान,
0: कोट कर्म करे हो तारे
1: श्राम पावे सगले बिर थारे,
0: अनेक तपस्या करे अहंकार
1: नरक स्वर्ग फिर अवतार,
0: अनेक जतन कर आत्म नहीं दरवे
1: हर दरगे को कैसे गवे,
0: आपस को जो भला कहावे
1: जिसे भला ही निकट न आवे,
0: सर्प की रेन जांका मन होए
1: को नानक ताकी निर्मल सोए,
0: जब लग जाने मुझते कछ होए
1: तब इसको सुख नाही कोए,
0: जब जाने मैं किछ करता
1: तब राग गर्भ जोन में फिरता,
0: जब तारे को बैरी मीत
1: तब लग नेचर नाही चीत,
0: जब लग मोह मगन संग माए
1: तब लग तार मराए देश जाए,
0: तब कर पाते बंधन टूटे
1: गुरु प्रसाद नानक हो छोटे,
0: सैस खटे लखो उठता आवे
1: तृप्त न आवे माया पाछे पावे,
0: अनेक भोग बिख्या के करे
1: ना तृप्त आवे खप खप मरे,
0: बिना संतोख नहीं को राजे
1: सुखन मनोरथ व्यर्थे सब काजे,
0: नाम रंग सर्व सुख होए
1: बड़ पागी किसे परावत होए,
0: कर्ण करावन आपे आप
1: सदा सदा नानक हर जाप,
0: कर्ण करावन करने हार
1: इसके हाथ कहां विचार,
0: जैसी दृष्ट करे तैसा होए
1: आपे आप प्रभ सोए,
0: जो कुछ कीनो सो अपने रंग
1: सब ते दूर सबो के संग,
0: मुझे देखे करे विवेक
1: आपे एक आपे अनेक,
0: मरे ना बिन से आवे ना जाए
1: नानक सद ही रह समाए,
0: आप उपदेशे समझे आप
1: आपे रचिया सबके साथ,
0: आप कीनो आपन विस्थार
1: सब कुछ का वो करने हार,
0: उसते पहन कहो किस होए
1: थान थनतर एक सोए,
0: अपने चलत आप करने हार
1: करे रांगया पार,
0: मन में आप मन अपने माहे
1: नाने कीमत कहन न जाए,
0: सत सत सत प्रभ स्वामी
1: गुर प्रसाद किने बखियाने,
0: सच सच सच सब कीना
1: कोट मदे किने बिरले चीना,
0: भला भला भला तेरा रूप
1: आत सुंदर अपार अनूप,
0: निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी
1: कट कट सुनी सर्व बखियाने,
0: पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत।

0: अष्टपदी
1: संत के दुखन आर जा कटे
0: संत के दुखन जमते नहीं छुटे
2: संत के दुखन सुख सब जाए
0: संत के दुखन नरक में पाए
2: संत के दुखन मत होए मलीन
0: संत के दुखन शोभा ते हीन
2: संत के हते को रखे ना कोए
0: संत के दुखन थान परष्ट होए
2: संत कृपाल कृपा जय करे
0: नानक सत्संग निंदक पी तरे
2: संत के दुखन ते मुख पवे
0: संतन के दुखन कागज लवे
2: संतन के दुखन सर्प जोन पाए
0: संत के दुखन त्रिक जोन कर माए
2: संतन के दुखन तृष्णा में जले
0: संत के दुखन सब को छले
2: संत के दुखन ते सब जाए
0: संत के दुखन नीचन चाए
2: संत दुखी का था को नाए
0: नानक संत पावे ता उही गत पाए
2: संत का निंदक महात ताई
0: संत का निंदक टेकन ना पाए
2: संत का निंदक महा हत्यारा
0: संत का निंदक परमेश्वर मारा
2: संत का निंदक राज ते हीन
0: संत का निंदक दुखियार दीन
2: संत के निंदक को सर्व रोग
0: संत के निंदक को सदा बजोग
2: संत की निंदा दुख में दुख
0: नानक संत पावे ता उसका भी होए मोख
2: संत का दुखी सदा पवित्र
0: संत का दुखी किसे का नहीं मित
2: संत के दुखी को डान लागे
0: संत के दुखी को सब त्यागे
2: संत का दुखी महाहंकारी
0: संत का दुखी सदा बकारी
2: संत का दुखी जन्म मरे
0: संत की दुखना सुख ते डरे
2: संत के दुखी को नाही ठाओ
0: नानक संत पावे ता लय मलाए
2: संत का दुखी अद बीच ते टूटे
0: संत का दुखी किते काज ना पहुंचे
2: संत के दुखी को ध्यान परमाइए
0: संत का दुखी उजड़ पाइए
2: संत का दुखी अंतर ते थोथा
0: यो सास बिना मृत की लोथा
2: संत के दुखी की जड़ किछ नाए
0: अपन बीज आपे ही खाए
2: संत के दुखी को अवर न राखन हार
0: नानक संत पावे ता लय अभार
2: संत का दुखी यो बिल लाए
0: यो जल बिहून मछली तड़फड़ाए
2: संत का दुखी भूखा ने राजे
0: यो पावकी तन नहीं तरापे
2: संत का दुखी छुटे अकेला
0: यो बाढ़ थेर खेत माए दहेला
2: संत का दुखी तरम ते रहत
0: संत का दुखी सद मिथ्या कहत
2: कीर्तन निंदक का तुर ही पिया
0: नानक ज्योतिष पावे सोई थिया
2: संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए
0: संत के दुखी को दरगे मिले सजाए
2: संत का दुखी सदा सहकाइए
0: संत का दुखी ना मरे ना जवाइए
2: संत के दुखी की पूजे ना आसा
0: संत का दुखी उठ चले न रास
2: संत के दुख न त्रिष्टे कोई
0: जैसा पावे तैसा कोई होए
2: या कीर्तन मेटे कोई
0: नानक जाने सच्चा सोए
2: सब कर तिसके ओ करने हार
0: सदा सदा तिसको नमस्कार
2: प्रभु की उस्तत करो दिन रात
0: तिसे त्यावो सास ग्रास
2: संकुश वर्ते तिसका किया
0: जैसा करे तैसा को थिया
2: अपना खेल आप करने हार
0: दूसरे कौन कर...

0: कारमल मेरे सत्य विहार
1: निर्मल रसनामृत पियो
0: सदा सहेला कर ले जियो
1: नैनो उपेक्षा कर कारंग
0: साथ संग बिन से सब संग
1: चरण चलो मार गोविंद
0: मिटिए पाप जपिए हर बिंद
1: कर हर कर्म सर्वन हर कथा
0: हर दरगे नानक उज्जल मथा
1: भट पागी ते जन जग माहे
0: सदा सदा हर के गुण गाए
1: राम नाम जो करे विचार
0: से तन वंत गनी संसार
1: तन मुख बोलो हर मुखी
0: सदा सदा जानो ते सुखी
1: को एक एक पछाने
0: सोजी जाने
1: नाम संग जिसका मन मानिया
0: नानक तिसे निरंजन जानिया
1: प्रसाद अपन आप सूझे
0: जिसकी जानो तृष्णा बुझे
1: साध संग हर हर जिस कहत
0: सर्व रोग ते हर जन रहत
1: आन दिन कीर्तन के बल बखियान
0: गृहस्थ में सोई निर्वाण
1: एक ऊपर जिस जन की आशा
0: जिसकी कटिए जम की फासा
1: पार ब्रह्म की जिस मन पूख
0: नानक तिसे न लागे दुख
1: जिसको हर ब्रह्मन चित आवे
0: सो संत सुहेला नहीं डलावे
1: जिस प्रभु अपना कृपा करे
0: सो सेवक को किसते डरे
1: जैसा सा तैसा दिष्टाया
0: अपने कार्य में आप समाया
1: सोदत सोदत सोदत सीजिया
0: गुर प्रसाद तासा बूजिया
1: जब देखो तब सब कुछ मूल
0: नानक सो सुख में सोई
1: न कुछ जन्मे न कुछ मरे
0: अपन चलत आप ही करे
1: आवन जावन दृष्ट अंदृष्ट
0: आज्ञाकारी तारी सब श्रेष्ठ
1: आपे आप सगल में आप
0: अनक जुगत रच थाप थाप
1: अविनाशी नाही कुछ खंड
0: तान तान रेओ ब्रह्मांड
1: अलख अपेव पुरख परताप
0: आप जपाए ता नानक जाप
1: जिन प्रभु जाता सो सो बावंत
0: सगल संसार उदरे तन मंत्र
1: प्रभु के सेवक सगल उदारन
0: प्रभु

0: उत्तम कर मान,
1: जो कुछ करे सो प्रभु के रंग,
0: सदा सदा बसे हर संग,
1: सहाय होवे सो होए,
0: करने हर पछाने सोए,
1: प्रभु का किया जन मीठ लगाना,
0: जैसा सात ऐसा दृष्टाना,
1: जिस ते उपजे तिस माए समाए,
0: सोखन दान उन्हों।

0: जाके सिमरन उधरी है
1: नानक तिस बलिहार राष्ट्रपति
0: टूटी गांडन हार गोपाल
1: सर्व जिया आपे प्रतपाल
0: सगल की चिंता जिस मन माहे
1: ते व्यर्था कोई नाहे
0: प्रेमन मेरे सदा हर जाप
1: अबनासी प्रभ आपे
0: आपन किया कछु न होए
1: जेसो प्राणी लोचे कोए
0: तिसमें नाही तेरे किछ काम
1: गात नानक जप एक हर नाम
0: रूप बंद होए नाही मोह
1: प्रभ की ज्योत सगल कट सोए
0: गुणवंता होए क्या को गर्वे
2: सब की स्थिति दिया
1: दर में
0: आत सूरा

0: सोजन सदा रोग
1: ज्यो मंदर को था में थमण
0: ज्यो गुर का शब्द मने थमण
1: ज्यो पखान नाव चढ़तरे
0: प्राणी गुर चरण लगत निस्तरे
1: अंधकार दीपक पर गास
0: गुर दर्शन देख मन होए बगास
1: ज्यो महाध्यान में मार्ग पावे
0: ज्यो साधु संग मिल ज्योत पर टावे
1: संतन की बाछो दूर
0: नानक की हर लोचा पूर
1: मन मूर्ख का हे बिललाइये
0: पूर्व लिखे का लिखिया पाइये
1: दुख सुख प्रभु देवन हार
0: अवर त्याग तू तिसे चतार
1: जो कुछ करे सोई सुख मान
0: पूला काहे फिरे अजान
1: कौन बसताई तेरे संग
0: लापटे और असलोभी पतंग
1: राम नाम जप हृदय माए
0: नानक पासे ते कर जाए
1: जिस बखर को लें तू आया
0: राम नाम संतन कर पाया
1: तजम्याल ताज अब मान लियो मन मोल
0: राम नाम हृदय में तोल
1: याद संते संग चाल
0: अवर त्याग बिखिया जंजाल
1: दान दान कहे सब कोए
0: मुख उजड़ हर दरगे सोए
1: पार बिरलाभ पारे
0: नानक ताके सद बलिहारे
1: चरण साध के तो पियो
0: अर्प साध को अपना जियो
1: साध की तूर करो इशनान
0: साध ऊपर जाइए करमान
1: साध सेवा बड़ पागी पाइये
0: साध संग हर कीर्तन गाइये
1: अनेक बिगनते साध रखे
0: हर गुण गाए अमृत चाखे
1: हे संते दर आया
0: सर्व सुख नानक ते पाया
1: नित को जीवा लनहार
0: भूखे को देवता धार
1: शरण दान जा की दृष्टि माए
0: पूर्व लिखे का लेना पाए
1: सब कुछ तिसका करने जो

0: अवसर हुआ न भोग
1: जप चन सदा सदा दिन रहनी
0: सबते ऊच निर्मल
1: कर कृपा जिसको नाम दिया
0: नानक सोजन निर्मल थिया
1: जाके मन गुर की प्रतीत
0: जन आवे हर प्रभ चीत
1: भक्त भक्त सुनिए ते लोए
0: जाके हृदय एको हुए
1: सच करनी सचता की रहत
0: सच हृदय सतमुख कहत
1: साची दृश सचा अकार
0: सच बाते साचा पासार
1: बार ब्रह्म जिन सच कर जाता
0: नानक सोजन सच सुन

0: मनसा पूरन सरना जोग
1: जो कर पाया सोई होगा
0: हरण परंजा का नेत्र पोर
1: जिसका मंत्र न जाने होर
0: रूप मंगल सद जाके
1: सार सोग सुनियर कर ताके
0: राज में राजयोग में जोगी
1: तब में तपिसर गृहस्थ में भोगी।

0: जाचक जन जाचे प्रवदान
1: कर कृपा देवो हर नामा
0: साध जिना की मांगो तूर
1: पार ब्रह्म मेरी श्रद्धा पूर
0: सदा सदा प्रभु के गुण गावो
1: सास सास प्रभु तुम्हें त्यामो
0: चरण कमल स्यो लागे प्रीत
1: पद करो प्रभु की नित नीत
0: एक ओट एको आधार
1: नानक मांगे ना प्रभु सार
0: प्रभु की दृष्ट महा सुख होए
1: हरस पावे बिरला कोए
0: जिन चाख्या से जंत्र पताने
1: पूर्ण पुरख नहीं डलाने
0: सुपर परे प्रेम रस रंग
1: उपजे चाओ साध के संग
0: परे शरण आन सब त्याग
1: अंतर प्रकाश अनिमल लाग
0: बड़ पागी जपिया प्रभु सोए
1: नानक नाम रते सुख होए
0: सेव की मनसा पूरी पई
1: सतगुर ते निर्मल मत ले
0: जिनको प्रभु होयो दयाल
1: सेव की नो सदा निहाल
0: बंधन काट मुक्त जन पिया
1: जान मान दुख परम गया
0: इश्कुनी श्रद्धा सब पूरी
1: राब रिया सत संग हजूरी
0: जिसका सातिन लिया मलाए
1: नानक भक्ति नाम समाए
0: सो क्यों बिसरे जे काल न पाने
1: सो क्यों बिसरे जे किया जाने
0: सो क्यों बिसरे जिन सब कुछ दिया
1: सो क्यों बिसरे जे जीवन जिया
0: सो क्यों बिसरे जे अगन में राखे
1: प्रसाद को बिरला लाखे
0: सो क्यों बिसरे जे बिखते काटे
1: जन्म जन्म का टूटा गांडे
0: गुर पूरे तत एह बजाया
1: पर अपना नानक जन त्याया
0: साजन संत करो यो काम
1: आन त्याग जपो हर नाम
0: सिमर सिमर सिमर सुख पावो
1: आप जपो अबरा नाम जपावो
0: भक्त पाए तरी ये संसार
1: बिन भक्ति तन होसी शार
0: सर्व कल्याण सुख निद नाम
1: मूर्त जात पाए विश्राम
0: सकल दुख का हो वतनास
1: नानक नाम जपो गुण तास
0: उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ
1: मंथन अंतर ही सुहाओ
0: नेत्रो पेक दर सुख होए
1: मन बिकसे सात चरण तोए
0: भक्त जिना के मंथन रंग
1: बिरला को पावे संग
0: एक बस दीजे घर में आ
1: गुर प्रसाद नाम जप लिया
0: ताकि उपमा कही न जाए
1: नानक रहा सर्व समाए
0: प्रभु क्षण दीन दयाल
1: भक्त बसन सदा कृपाल
0: अनाथ नाथ गोविंद गोपाल
1: सर्व कटा कर्त प्रतपाल
0: आदि पुर कारण करतार
1: भक्त जना के प्राण आधार
0: जो जो जपे सो होए पनीत
1: भक्त पाए लावे मन हीत
0: हम निर्गुणियार नीच अजान
1: नानक तुमरी शरण पुरख भगवान
0: सर्व बैकुंठ मुक्त मुख पाए
1: एक निमख हर के गुण गाए
0: अनेक राज भोग बढ़ियाई
1: हर के नाम की कथा मन पाए
0: वो भोजन का पर संगीत
1: रसना जपदी हर हर नीत
0: पली सुकानी शोभा तनवंत
1: हृदय बसे पूर्ण गुर मंत
0: साध संग प्रभु दियो निवास
1: सर्व सुख नानक पर गास सलोक
0: सर गुण निर्गुण निरंकार
1: सुन समाधि आप
0: आपन किया नानका
1: आपे ही फिर जाप अष्टपदी
0: जब अकार एक कृष्णा दिष्टेटा
1: पाप मुन तब कहते होता
0: जब तारी आपन सुन समाद
1: तब बैर विरोध के संग कमात
0: जब इसका वरण चह न जापत
1: जब हर सुख किसे व्यापत
0: जब आपन आप पार ब्रह्म
1: तब मोह कहाँ किस होवत पार
0: आपन खेला बरती जा
1: नाने करने हार न दूजा
0: जब होवत प्रभु केवल तनी
1: तब मुक्त को किस को गनी
0: जब एक हर अगम पार
1: तब नरक सुर को कौन उतार
0: जब निर्गुण प्रभु सहज सवाए
1: तब शिव शक्त को कित ठाए
0: जब आपे आप अपनी जो तरे
1: तब कवन डर कवन का तो डरे
0: आप बंचल ताप करने हार
1: नानक ठाकर अगम पार
0: अवनासी सुखा पनासन
1: जन मन को कहा बनासन
0: जब पूरन करता प्रभु सोए
1: तब जम की त्रास को किस होए
0: जब अवघित अगोचर प्रवे का
1: तब चित्र गुप्त के पूछत लेखा
0: जब नाथ निरंजन गोचर गादे
1: तब कौन छुटे कौन बंधन बादे
0: आपन आप आप ही आचर
1: नानक आपन रूप आप ही अपर
0: जय निर्मल पुरख पुरख पत होता
1: जय बिन मैल कहो क्या
0: तोता जय निरंजन निरंकार निर्वाण
1: जय कौन को मान कौन अभिमान
0: जय स्वरूप केवल जगदीश
1: जय शर्त लगत को कीस
0: जय ज्योत स्वरूपी जो संग समावे
1: जय किसे पू कौन त्रिवतावे
0: करन करावन करने हार
1: नानक करते का नाहि सुमार
0: जब अपनी शोभा अपन संग बनाई
1: तब कवन माए बा मित्र सुत पाए
0: सर्व कला पे परवीन
1: तब वेद कतेब कहां को चीन
0: जब अपन आप उर धारे
1: तो सगन अब सगन कहां बेचारे
0: जय अपन ऊंचा अपन आप नीरा
1: जय कौन ठाकर कण कहिए जीरा
0: मन विषम रहे विस्मार
1: नानक अपनी गत जानो आप
0: जय अचल अशेद अपेद समाया
1: वह किसे व्यापत माया
0: आपस को आपे आदेश
1: जय गुण का नाही परवेश
0: जय एक एक भगवंता
1: जय कौन अचेत किस लागे चिंता
0: जय अपन आप तिया पुकारा
1: ते कौन कथे कौन सुनने
0: हरा बेअंत ऊचते ऊचा
1: नानक आप सबको आपे पहुंचा
0: आप रचियो परपंच अकार
1: ते गुण में कीनो बस्तार
0: पाप उनते पई कहावत
1: को नरको स्वर्ग बिशावत
0: माल जाल माया जंजाल
1: में मोह पार पे पार
0: दुख सुख मान अपमान
1: अन प्रकार क्यों बखियान
0: आपन खेल आप कर देखे
1: खेल सोचे तो नानक
0: जय अभकित पगते आप
1: जय पसरे प्रसार संत प्रताप
0: पाका आपे तनी
1: उनकी शोभा उन्हों बने
0: आपे कौतक करे आनंद चोज
1: आपे रस को गनर जोग
0: जिस पावे तिस आप नाय लावे
1: जिस पावे तिस खेल खलावे
0: बेस मार अथा अगन

0: सत्संग अंतर प्रवडीठा
1: नाम प्रभु का लागा मीठा
0: सगल समग्री एकस कटमाहि
1: अनक रंग नाना दृष्टाय
0: नौनिद अमृत प्रभु का नाम
1: देहि मैं इसका बसराम
0: सोन समाद अंत नाद
1: कहन जाइए चरद विस्माद
0: जिन देखिया जिस आप दिखाए
1: नानक जनन सो जी पाए
0: सो अंतर जो बाहर अनंत
1: कण व्याप रहा भगवंत
0: तरन माय आकाश प्याल
1: सर्व लोक पूर्ण प्रतिपाल
0: बंतिन पर्वत है पार ब्रह्म
1: जैसी आज्ञा तैसा कर्म
0: पौन पानी पे संतर माए
1: चार कुंड दे जिसे समाए
0: तिस्ते पिन नहीं कोठाओ गुर
1: प्रसाद नानक सुख पाओ
0: वेद प्राण सिमृत में देख
1: सस्यर सूर नखत्र में एक
0: वाणी प्रभु की सबको बोले
1: आपन डोलना कबू डोले
0: सर्व कला कर खेले खेल
1: बोलना पाइये गुण अमोल
0: सर्व ज्योत में जाकी ज्योत
1: हरियो स्वामी ओत
0: गुर प्रसाद परम का नास
1: नानक तिन में हो बसास
0: संत जना का पेखन सब ब्रह्म
1: संत जना के हृदय सब धर्म
0: संत जना सुने शुभ वचन
1: सर्व व्यापी राम संग रचन
0: जिन जाता सिसकी ये रहत
1: सत वचन साधु सब कहत
0: जो जो होए सोई सुख माने
1: कारण करावन हार प्रभु जाने
0: अंदर बसे बाहर पियो ही
1: नानक दर्शन देख सब मोहि
0: आप सत किया सब सत
1: इस प्राप्ते सगली उत्पात
0: इस पावे ता करे विस्तार
1: इस पावे ता एक अंकार
0: अनेक कला लखी ना जाए
1: जिस पावे तिस लय मनाए
0: कवन निक कवन कहिए दूर
1: आपे आप भरपूर
0: अंतर्गत जिस आप जनाए
1: नानक तिजन आप बजाए
0: सर पूता वरतारा
1: सर्व नैन आपे खनहारा
0: सगल समग्री जा का तना
1: अपन जस आप ही सुना
0: आवन जानी के खेल बनाया
1: आज्ञाकारी किन्नी माया
0: सबके मद अलप तो रहे
1: जो किस कहना सो आपे कहे
0: आज्ञा आवे आज्ञा जाए
1: नानक जा पावे ता लय सुमाए
0: होए सुना ही बुरा
1: बुरे काहू किने कछ करा
0: आप पला कर तू ततनी की
1: आपे जाने अपने जी की
0: आप साज तारी सब साज
1: पोत पोत अपन संग राच
0: ताकि गतमित कही न जाए
1: दूसर होए ता सो जी पाए
0: जिसका किया सब परवान
1: गुर प्रसाद नानके हो जान
0: जो जाने ते सदा सुख होए
1: आप मनाए लय प्रभ सोए
0: धनवंत कुलवंत पितवंत
1: जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत
0: तन तन तन जन आया
1: जिस प्रसाद सब जगत तराया
0: जन आवन कायो स्वाओ
1: जन के संचित आवे नाओ
0: आप मुक्त मुक्त करे संसार
1: नानक ते जन को सदा नमस्कार सलोक
0: पूरा प्रभ आराध्या
1: पूरा जा का नाओ
0: नानक पूरा पाया
1: पूरे के गुण गाओ अष्टपदी
0: पूरे गुर का सुन उपदेश
1: पार ब्रह्म निटकर पीख
0: सासा सिमरो गोविंद
1: माने अंतर की उतरे चिंद
0: आस अनित्या गोत्रंग
1: संत जन की तुर मन मांग
0: आप छोड़ बेंती करो
1: सास संग अगन सागर तरो
0: हर तन के पर लियो पंडार
1: नानक गुर पूरे नमस्कार
0: कुशल सहज आनंद
1: सास संग पंच परमानंद
0: निवार उदारो जियो
1: गुण गोविंद अमृत पियो
0: चित चित बौ नारायण
1: एक रूप जाके रंग अनेक
0: गोपाल दमोदर दीन दयाल
1: दुख भंजन पूर्ण कृपाल
0: सिमर सिमर नाम बारंबार
1: नानक जी का यह आधार
0: उत्तम श्लोक साध के वचन
1: अमलीक लाल ए रतन
0: संत कमावत होत दार
1: आप तरे लोके निस्तार
0: सफल जीवन सफलता का संग
1: जाके मन लागा हर रंग
0: जय जय शब्द अनाद बाजे
1: सुन सुन आनंद करे प्रभ गाजे
0: गोपाल महंत के माथे
1: नानक उदरे तिन के साथे
0: सर जोग सुन सर नी आए
1: कर कृपा प्रभा मलाए
0: मिट गए बैर पै सवरेन
1: अमृत नाम साथ संग लैन
0: सो प्रसन्न पै गुरुदेव
1: पूर्ण होई सेवे की सेवे
0: आल जंजाल बेकार ते रहते
1: राम नाम सुन रसना कहते
0: कर प्रसाद या प्रवतारी
1: नानक ने बेखे हमारी
0: प्रभु की उस्तत करो संत मीत
1: सावधान एकागर चीत
0: सुखमणि सहज गोविंद गुण नाम
1: जिस मन बसे सो तन दान
0: सर्व इच्छा ता की पूरन होए
1: प्रदान पुरख प्रगट सब लोए
0: साते उच पाए स्थान
1: बोल ना होवे अमन जान
0: हरतन खाट चले जन सोए
1: नानक जिसे प्राप्त होए
0: खेम शांत रिद नव सिद्ध
1: बुद्ध ज्ञान सर्व ते सिद्ध
0: विद्या तप जोग प्रभ ध्यान
1: ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान
0: चार पदार्थ कमल पर गास
1: सबके मल सगल ते उदास
0: सुंदर चतुर तत्व का वेता
1: समदर्शी एक दृष्टिता
0: ए फल तिस जन के

गुरु रूप गुरु प्यारी सात संगत जी अरदास बेनती तो उपरंत सचे पातशाह जी ने जो हुक्म बख्शिश किया है धनासरी राग दे विच 671 अंग दे विच गुरु अर्जन पातशाह जी दे मुख तो उचारिया होया शब्द है जिसका तन मन धन सब तिसका सोई सुगड़ सुजानी तिन ही सुनिया दुख सुख मेरा तो बिद नीकी खटानी। सचे पातशाह कहिंदे जिदा दिता होया सारा कुछ है जिन्हें शरीर दिता जिन्हें मन दिता जिन्हें संसार दे विच विचरन वास्ते धन दिता कहिंदे जो सारा कुछ ही उहदा है तो वह आप ही सारा कुछ दुख सुख सुन के तो आप ही कृपा कर दिंदा जी की एक है ही पैमानी अवर जतन कर रहे बो तेरे तिन तिल नहीं कीमत जानी। कहिंदे वो परमेश्वर पिता आप कृपा करदा जिहड़े होर आपां हथ पैर मरदे आ ना उहनां दी तिल भर भी कीमत नहीं पैंदी। इस करके सचे पातशाह कहिंदे नाम जपो ते भाई गुरु अगे जोदड़ी करके अपना कार्य आरंभ कर दिओ। सचे पातशाह आप ही सारे कार्यां दे विच सहाई हुंदे हन। आईआं सरबत साध संगत दा दास तहि दिल तों धन्नवादी है परिवार वल्लों धन्नवाद है। जल पाणी ਥੱਲੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਛੱਕ ਕੇ ਜਾਣਾ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

संपत बनता विनोद, छोड़ गए बहु लोग पो हैवर गैवर राज रंग, त्याग चलेओ है मूड नंग, चो चंदन देहे फूलिया सो तन धर संग रुलिया, सो तन धर संग रुलिया, सो तन धर संग रुलिया, मोहे मोहे आ जाने दूर है को नानक

जह कहत है भरपूर शब्द दीपक दीपायो, जह सिख है संग्रहयो तत हर चरण मिलायो। तिन बेदियन की कुल बिखै प्रगटे न

ज्ञान ध्यान किस कर्म न जाना, सार न जाना तेरी, सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी।

वस्त्र छीनत द्रौपदी लख रखी लाज जिन जिन सेवे अंतवार रे मन सेव तू पर त्रिलोचन गुरमिल पही स्वद सिद्ध बेणी को कुर कियो प्रगास रे मन तू भी हो है दास जय देव त्याग्यो अहमेव नाई उधरयो सैन से मन डीग न डोले कहूं जाए मन तू ही तरसे शरण पाए मन तू भी तरसे